जीवन में बन रहा है बिल्कुल ठीक काल के वाले शेप सिफर 0963 511 488 SMS वाला सी बिल्कुल जीरो तुला ले शे 0313 785 884 0313 785 884 बिल्कुल जीरो तुला ले शे वैसे हो गया खा बच्चे शो लाइव दो जी बिल्कुल शो लाइव देखा रेडा खांडेरे बने रहते बल्ला सेला मुने बैजान संगे बैजान शो दिन नाइसा बैजान खुड़ी रखी जी चाचे नोटेंशन इस्तेमाल भी चाचे नोटेंशन इस्तेमाल भी अगर बदनोरो कंपनो ना अखली ना मुने वावल सी गैर शा नोटेंशन से रिजल्ट है ना वही ब्याबे मार वक्त ही निकल सिफतुन बैजान दुमर पमा ग्रानी ची पोटिक शाक्षी रहता और चुचिक चाक्षी ता रवान वेजे दिशमानम की दमुन वावाज वाव बदाप के लाबल है दिलान बिचे नी समा खुरडी रमन ने जिदा तुसी तरे नोटेंशन सरे मीने दा शा दा तासो नोटेंशन निसी माले किडी दी दा सुले खुला दिर कड़ी तो रिजल्टों इंदिर किडी दी ची सुबाहर ची नूर लहा दा मशवरे वेरे के वैसी कुरी दी बाई ची कम प्रोडक्ट सी नोटेंशन कम प्रोडक्ट सी जमंग नोटेंशन बिटे मनसी फेस वाश ते जमंग नोटेंशन एंजॉयमेंट फॉर्मूले क्रीम की जमंग ब्यूटी क्रीम का फॉर्मूले क्रीम का गुड क्रीम जी दी मजेदार रिस्क ले दिशा अस्सलाम वालेकुम जमाने सवले और पमुशा गाना बजान चलेंगे शय तबीयत दिशा दे तफा फॉर यू जमा जमा सिने की जड़ गए सा है जमाना जात रोजाना साफी कर गवे ना नोटेंशन जिंदाबाद को यहां पे इंदबाड़े रे मनन से ना खुशहाल से बने लाफते सीओ जहान मनन से अवलवाई जनाब सलाम वाया उमर हयात ततोरी मजी लका ततोर से चरंगा चरंगा स सुजी बिगड़े गने से केनन पे वरजे केन पे वरजे परुंदर नजर खलास गुशा आओ केन से सलाम खुश भाई प्लीज परुन में अब ना नोटेंशन विटामिन सी फेस वाश रवस्ते को अब में वैसे दुकानदार थे भी चांगल खुलिया मासरे न मिला वैसे भाई अम्म में सी नोटेंशन ब्यूटी फेस वाश रवड़े रजी खुश भाई माशाल्लाह नोटेंशन ब्यूटी फेस वाश हिस्सा दे जमा विटामिन सी फेस वाश था डेली इंतजार था सी डॉक्टर सर हम इसे नोबेल कर सी विटामिन सी फेस वाश भरोसे शाह इंतजार कर सी निशिकल तुम भी निकला सारा मिसुस तुम जो उनो टेंशन विटामिन सी फेस वाश तबे चुवा वा भाई जाना शिकम फेस वाश जुड़ कर रहेगे ना सी यकीनन सरा डीर मजेदार डीर खुले दे हाँ माल लश खुने ली दे रहेगे ना लश खुने मिसी माल कर रहे हैं नो खुडीर खुले वो हाँ डीर मजेदार हो सी सुबह रह सी उमर भाई की जमावाज है उन्हें जिन्होंने चला था उससे बजम का नोटेंशन विटामिन सी फेस वाश नोटेंशन डायमंड फॉर्मूले क्रीम से कम दिखना रहो रसी खाल का सिद्ध रामान से बो चवाए अबे दुकानदार मा कम मामा वही सी कम मामा दे अलग ना बच्चा कम मामा वही किन्हें सी अगर डेरावर ललिया गाना से कम दिखना ना आये डेरावर लले चिशले हाँ डेरावर मामा यार के डेरावर मामा अलग ब्रेक चिंग का कास तो तुमको मिनवाल है का सिद्ध रामान बेटा नेसे बाउडे रावर मामा जमंगे प्रोग्राम डिर पे मिना हो रहेगा जीता दौड़ता डाले शा

जी बिल्कुल एवरीथिंग प्रोग्राम से गप समय प्रोग्राम से पदे नंबर माने कॉल मेसेज का दिन लिसनर समय दी प्रोग्राम यानी सहर प्रोग्राम की कॉल खड़े नो उस प्रोग्राम की बाग कॉल न कवे नूर नवे लिसनर तक निकना प्रोग्राम की मौका और मुंगसर अखले खबर की सवाल वाड़ी और सन्न वही नो तसो कुम कॉल तसो मैसेज बहुम द प्रोग्राम ऐसा जुड़ेगी नो अरविंद के प्रोग्राम से सवाल मैसेज हम रगले दी अब हम दर तशा मिलो और लश के शांति बहा वेट कर वेट वेट वेट

0: सो वेलकम बैक। जी मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना पानी पी लेता हूँ, मेरा गला जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो गया। तो बिल्कुल जरा आप कॉल के लिए नंबर नोट फरमाइए और अभी मुझे कॉल खड़काइए क्योंकि प्रोग्राम के रह रही है 10 मिनट हो, तो 10 मिनट आप लोगों से गपशप लगाएंगे। जी 10 मिनट हम प्रोग्राम पाते थे जनाब, सा खबरी कहूँ अतरी कहूँ गपशप लगू जनाब, द नंबर नोट गई और बकाल बने मासर राशाई सी 0-9-63-511-488 बिल्कुल जनाब दा नेटवर्क मसली हम डीर ज्यात दी टांकी औदी लवज सा सुकालू ना कट छी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन और कहां से मेरे भाई?
1: शाहालम से मोहम्मद बख्तियार।
0: कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, तबीयत सी ठीक है
1: माशाल्लाह जी, आप सुनाओ।
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। शाहालम जो टांग के साथ है वहां से बात कर रहे हैं? जो शाहालम टांग के साथ है ना वहां से बात कर रहे हैं आप?
1: जी
0: हाँ। अच्छा जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे, किस का प्रोग्राम सुनते रहते हैं? अच्छा अच्छा, बस सर कह रहे हूँ कि पश्तो वाले सुलाना तेरी उर्दू मैं को थोड़ी कमजोर कमजोर लगती पई है। कीरी जबान तो सा लेने बेघारी चाह पश्तो अभी पश्तो की खबर ही को नजी उर्दू मतलब जडीर अबरूर पर रवान विवरूर सरंगे शैयत बियसियत शदा। अच्छा इंशाल्लाह उर्दू से हम सौ प्रैक्टिस वसी और सर से सरेखी से हम वसी उर्दू से हम वसी जनाब दार तो वही लकी सन कम प्रोडक्ट सौ समय लगे आयो क्रैक क्रीम सौ समय लगे उच्च दफारम इस्तेमाल वाला उच्च दफारम दा इस्तेमाल वाला की सन क्रैक क्रीम सौ से मसल वो।
1: हेलो
0: हेलो, आवाज रवान दे ब्रो।
1: हेलो, आवाज
0: देना राजी आवाज। बिल्कुल जनाब द नेटवर्क मसली।

0: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन, 88.4 अमन का पैगाम, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम।
1: योर म्यूजिक, योर रिक्वेस्ट।
2: दिस इज रेडियो स्टेशन,
3: रेडियो अमन

0: या तो वो बच्चे में कन्वर्ट होती है फिर वहीं से ही।
1: ठीक ठीक ठीक।
0: अब रहेगा बाकी इसका के अगर आपका वजन बढ़ रहा है ज्यादा हो रहा है तब भी आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा।
1: ठीक है
0: ठीक है। और कि इसको आप वहीं कंट्रोल कर सकें लेकिन उसके लिए आप हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो लाजमी रखें। बाकी खानदानी से तो ये आती आती ये तो इसकी वजूहत में। अब आ जाते हैं कि आप एहतियात क्या कर सकते हैं।
1: हाँ, एहतियात एक मरतबा फिर भी आप बता दें कि
0: एहतियात जो एहतियात में अगर आप आएंगे तो उसमें फिर यही है या इकदमात अगर आप एहतियाती करते हैं तो उसमें आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। फल सब्जियां और या फिर ऐसी खुराकें जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। दालें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं है गोश्त को आप कम करें। हमारे यहाँ जो है गोश्त को ज्यादा पसंद किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। हालांकि देखा जाए तो 70% तकरीबन सब्जियां हैं 20% दालें हैं और 10% देखा जाए तो गोश्त है अगर एक फार्मूला देखें। लेकिन हमारे यहाँ जो है 70% तो गोश्त है और बाकी जो है तो वो फिर जाहिर बात है कि हम फिर ऐसी चीजें अडॉप्ट करेंगे ना। बाकी नरम और जूद हजम खुराक है कि जो आपके मैदे में हल हो सके और मैदे पे इतना बोझ ना बने।
1: बिल्कुल ऐसी
0: बात। और जहां तक हो सके कोशिश करें कि आप कब्ज से बचें। अपना पखाना आपका टाइम पे हो उसका नरम हो और ज्यादा सख्त ना यानी कि कोशिश करें कि उसका ना हो।
1: चलें ठीक है। तो बिल्कुल सामने दिख रहा हूँ अगर आपको भी इस किस्म का कोई मसला है सो आप ये आ सकते हैं। जी हकीम साहब बवासीर के बारे में आप कोई टोटका भी बताइएगा सामीन को। आखिर में चूंकि टॉपिक इसके बाद थोड़ी कॉल्स भी लेंगे
0: सही है
1: इसके बारे में कोई टोटका भी बताइएगा और आखिर में आप बवासीर के हवाले से सामीन को क्या पैगाम देंगे।
0: देखें इसमें पैगाम तो यही देना है अपने सामीन को कि बवासीर एक ऐसा मसला है
1: हाँ जी
0: जिसे छुपाना नहीं चाहिए।
1: हाँ
0: शर्म नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसी
0: ठीक है ना। आप किसी से नहीं बात करते हैं लेकिन आप अपने मुआलिज से तो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आप मुआलिज से बात करें उसे बताएं कि मुझे ये शिकायत मैं महसूस कर रहा हूँ अपनी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ ताकि मुआलिज फिर आपकी तशखीस करे और आपको उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन भी दे।
1: ठीक है।
0: तो बाकी अगर आप महसूस करते हैं अपने ताई के मुझे कोई ख्वारिश है जलन है दर्द है तो फिर आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ मुझे शिकायत हो रही है लेकिन मुआलिज से मिलना बहुत जरूरी है।
1: ठीक है।
0: और बाकी अपनी खुराक पे अपनी एक्टिविटीज पे उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बाकी कोशिश करें कि जो फार्मी फूड्स हैं होटलिंग है इससे ज्यादा थोड़ा सा अपने आप को बचाएं।
1: चलें
0: घर की सादा खुराक हो वही बेहतर है।
1: ठीक है। हकीम साहब आखिर में एक टोटका बताइएगा हमारे सामीन को।
0: टोटका इसके लिए यह है कि आपने सुना होगा कि बकाइन का दरख्त होता है जिसे हम धरेक भी कहते हैं पंजाबी में।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: इसका फल वो नबोलियां जो होती हैं।
1: हाँ, ठीक है।
0: इसके बाद नीम
1: नीम
0: नीम के नीम की भी नबोलियां जो उसका फल है।
1: ठीक है।
0: ये दोनों हम वजन लेकिन ये सूखी भी खुशक लेनी है। उसके बाद इसमें आपने उतने ही वजन के बराबर आपने पंसारी से रसौंत लेनी है।
1: रसौंत
0: ठीक है।
1: ठीक है।
0: रसौंत लेके इन तीनों चीजों को आपने ग्राइंडर कर लें या कूट लें मतलब ये आप सफूफ बना लें।
1: हकीम साहब एक मरतबा मैं फिर स्वामीन को बताना चाहूंगा नीम का फल हो गया
0: और धरेक का फल हो गया और रसौंत हो गई ये तीन चीजें बस इनको आपने बारीक पाउडर करा और बाजार से खाली कैप्सूल मिल जाते हैं।
1: ठीक है।
0: ठीक है। ये कैप्सूल आप भर के रख लें दो कैप्सूल सुबह और दो शाम।
1: हाँ सही।
0: शुरू में आप तीन टाइम लेंगे सुबह दोपहर शाम उसके बाद आप दो टाइम कर देंगे इससे आपका खून आना जो है वो भी कम हो जाएगा।
1: हाँ जी।
0: और दूसरा यह है कि जलन सोजन और दर्द में भी आराम आए।
1: चले ठीक है। बिल्कुल सामीन इकराम आपने गुफ्तगु समाज फरमाई हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की जिन्होंने बवासीर के हवाले से एक बहुत ही निहायत मुफीद टोटका आपको बताया। अगर आप ये टोटका खुद तैयार नहीं कर सकते तो आप एक मरतबा तशरीफ लाएं अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नर्स ट्रैफिक चौक टांका। انشاءاللہ کل بروز اتوار حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب شوال مارکیٹ الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ

मैं हूँ आसमानूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

0: Τώρα η μαζί με ζει, τάρτα ούγε γέζει από τα σαπάρσι, δεν τόσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ, έχω χαστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ, μάρα η μεζί μου έχω κορτά, national or multinational, καπνέβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κέζει τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Μπέλκολ τα ρεχανά, τα γυλεύε χάρβα το μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβη σε ρικρέτη, ω τον κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी बिहाई कुर्ता जहर से रबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी से कपड़े सा पयुशले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी से खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी वो बला खबर अदा कपड़े सा पई पवा नो सीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मत चेरते मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दफ पने গলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইসব সারদার তালে